मिलन गीत मधुमती चित्रपटें गायने कराने मोहम्मद राफी तामत में जाना प्रेम सुदुकालू चित्रपटें वाई जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तमाम चित्रपटे रंग पैवे अभी तोरा ओबे इलिमानु मे गीत बहुत दिन क्लिया तिबुना मधुमती चित्रपटे गीत गणना वक ए अतरी मातोरागत वेडिमंदिन किला तिबु गीत अभी धन संबंध में

1902 फुमसिक मोहम्मद राफी और दीसर लीड के सुंगन इदसम से पनस देखे वसरे मोहम्मद राफी में गीते गायन कला आन के चित्रपट

मिलन गीते जब प्यार किसी से होता है चित्रपट दर्शन से हटे एक गीत में चित्रपट प्रदर्शन उन्हें मोहम्मद राफी समग्र लता मंगेशकर तमाम गीते गायने कराने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1900 आयन उन सेक्स जब प्यार किसे होता है उन मोहम्मद राफी मीट लता मंगेशकर

गीते गायनकले महेन्द्र कपूर हाम्रास चित्रपटले 1977 वर्षीय चित्रपटले प्रदर्शन हुने मिलन गीते लता मंगेशकर समग किशोर कुमार तम गायनीकरण संगीत सपेवा एस डी बर्मन 1977 नामे आराधना चित्रपट राजेश खन्ना समग शर्मिला ठाकुर तम मे चित्रपटे रंगपाने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द किशोर कुमार उन लता मंगेशकर फ्रॉम द फिल्म आराधना दे लीप नोन से नुंड नोन उन सेक्सिक राजेश खन्ना और शर्मिला ठाकुर हंटर दीसन फिल्म की स्पील्ड म्यूजिक फ्रॉम एस डी बर्मन

0: मिलन गीते मोहम्मद रफी गाने कराने चित्रपटे दोस्त थी सौंद एक गीते तो जो नेक्स्ट लीड फन मोहम्मद रफी
1: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को

मिलन गीत मन्ना डे गायनी कला श्री हार से विश्व चित्रपटे नेक्स्ट लीड फॉर द फिल्म 300 स्वांसिक फॉर मंडा डे।

इंद्रसनम से हटे वसरे प्रदर्शनियोनु दिल अपना और प्रीत पराय चित्रपटे रंगपानोआ मीना कुमारी राजकुमार ओम प्रकेश समग किशोर साहू संगीते सप्याने शंकर जाय किशन में गीते गायना करनवा लता मंगेशकर दिल अपना और प्रीत पराय लिफ्ट 1966 हाउप्टोलग स्पेल्ट मीना कुमारी उन राजकुमार म्यूजिक फॉन शंकर जाय किशन उन दिस लीड फॉन लता मंगेशकर।